राज विचार अपना जान मुझा प्रत परिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया देख तेग जग मैं दो चल राख आप मुहि और नंद लै तुम मम कर हो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरिन संघारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता बिद नाना कृष्ण जथा मात चरित्र चार चूक होए कब लेहो सुधारो कब्यो बाच दोहरा जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहे हो जग माहे जो दे प्रभ को त्याहे है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हार हर जंद एक है बिब विचार काश नाहे जाल ते उपजत रंग ज्यों जाल ही बिखै समाहे दोहरा जब आयस प्रभ को भयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते समूह कैद सुनाए कब बात दोहरा ठाड़ पहो मैं जोर कार बचन कहा शरण आए पांच लै तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फालू पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की देह मो कोटक बिशन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सहस क्रूर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुगे अटल सब कोई भाखत नेत सुरग बासरग बुरकरा सगरी पुरी समेत चाओ पाई जो एह कथा सुने अर गावै दुख पाव ते निकट न आवै बिशन भगत किए फल होई आद ब्याद शुभ सगन कोई समद सतरह सहज पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लह लेह सुधारा दोहरा नेत्र तोंके चरण तार सुद्रवती तरंग श्री भगवत पूर्ण की रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानू नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण की भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनयो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह माते एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु

आनंदे को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया रागतन परवार परि

0: माता गंगा दे दुलारे छेवें पाशा सोहे राजिया तो मत सरकार
1: अज नाल बंदे घुंघरुआ पाई छणकार तेरी आत्मा जवानी उत्ते लगा रे गमार घुंघरुआ पाई छणकार फेरी आत्मा जवानी उत्ते लगा रे गमार गूंजा पईआं जदों

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी
2: हालत पलत मुखे उजल

0: सत्संगत इतनी हाजरी प्रवान करनी, क्योंकि समा मैं भी दो तीन मिनट उत्ते लै गया। असल विच वक्ता भावें किड्डा भी वड्डा वक्ता होवे, जे ओह वक्ता नहीं तो फिर वक्ता भी नहीं। जे किसी स्टेज सैकटरी ने पहुंचे खिच खिच के बिठाया भी बह जा भाई तेरा टाइम खत्म हो गया तो फायदा की। सतसंगत माफ करना, कई थावां ते स्टेज सैकटरी इस तरह के होंगे मैक अगे हथ रख के मैक पासे लै जाते भी भाई तेरा टाइम समाप्त है। बड़ी फिर इंसल्ट फील होंदी है, इस वास्ते माफ़ी चाहुंदा। दो तीन मिनट मैं उपर लै गया अपने समय में समाप्ति करन तो। फुला चुका दिखेवा जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की
1: सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन बहुत ही सत्कारयोग हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो दरबार साहब तो भाई साहब भाई सुखजीत सिंह जी कुहाड़का अते उन्हां दा रागी जथा समूह संगत वालों जथे का बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमत करन, इस तरह चढ़दी कला दे नाल कौम दी पंथ दी सेवा करदे रहन। सो खालसा जी, जो अज तीसरे दिन दे विच राग दरबार सज रहा है, जिस विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो बहुत ही सत्कारयोग जथे अपने कोल पहुंचे हुए ने भाई कमलजीत सिंह जी, उन्होंने हाजरी भरी है। भाई गुरजीत सिंह जी, उन्होंने हाजरी भरी है। इन्हां गुरमुख प्यारियां दा तह दिल तो धन्नवाद है जो बेनती नूं प्रवान करदे होए इस राग दरबार दे विच हाजरियां भरदे लई पहुंचे ने। सो आओ खालसा जी, जो अगला जथा है बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी फुल, भाई अमरीक सिंह जी फुल, जो साडा अपना घर दा जथा है। बहुत ही पिछले लंबे समय तो खालसा जी इस वैनकूवर की धरती ते आले दुआले इलाके दे विच कीर्तन दे सवाबा निभा रहे ने। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमत करन, चढ़दी कला बख्शिश करन। सो आओ तकरीबन आने वाले 25 मिनट वास्ते दो जो शब्दों की हाजरी भरनी है, जो दो राग गायन करने ने, गौड़ी ग्वारी अते वढ़ंस दखनी। सो दो राग आप संगतां नूं भाई अमरीक सिंह जी फुल, उस्ताद भाई गुरदेव सिंह जी फुल, उन्हां दा जथा सरवण करवावेगा। सो जथिआं नूं बेनती है कि कृपा करके समय दे विच रह करके आपां समाप्ति करनी है, क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा लेट प्रोग्राम हो गया सी। सो संगतां ने अगले दिन कारोबारां दे विच भी जाना हुंदा, वीकडेज चल रहे ने। सो बेनती है सारे जथियां नूं कि समय दे विच रह करके आपां अपने जो टाइम दे विच रह करके समाप्ति करनी है। सो आओ जी गुरबाणी नाल जुड़दे हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।
0: वाहिगुरु जी।

किसीदा पड़ोसी है, एक पुरुष कितने रूप रखता है, एक भ्राव भी है, एक पति भी है, एक पुत्र भी है, एक पड़ोसी भी है, एक दोस्त भी है। इस तरह स्त्री भी एक होंदे होया अनेक है, जे किसी की बच्ची है, किसी की धी है, तो किसी की बहन भी है, किसी की बहन तो किसी की सहेली भी है, किसी की पड़ोसन भी है, और फिर किसी की पत्नी। सारे रिश्तों में पकियाई होवे, पवित्रता होवे, इस वास्ते विचोला चाहिदा सी। तो विचोला गुरु गुरु मोर लांदा है कि मनुख पुरुष भरा बने ते चंगा बने, लोकी मान करन के भरा होवे ते ऐसा होवे, ते पति बने ते आदर्शवादी और एक वाकई नमूना बने, और ये पुत्र बने ते ऐसा कि मां बाप फकर करन, ते दोस्त बने ते ऐसा कि दोस्त उससे मान करन, और ये पति बने ते ऐसा कि पत्नी का मान सम्मान ते इज्जत आबरू बने, उसकी खुशी बने। हूबहू इसे तरीके नाल इतनी ही जिम्मेवारियां ने बच्ची दी, ते बच्ची ऐसी बने कि मां बाप के हिरदे हमेशा याद करते रहन, ते साडे घर का बिछड़िया होया फुल सी पहले महक वंडी पेके कर दे, हूँ महक वंड रही है सौरे कर दे, और मां बाप की खुशी बनी रहे, महक फैल रही है खुशबू फैल रही है। एक पत्नी बने आदर्शवादी, एक बहन बने महान, बड़ा मान कर बहना मान कर। सारे रिश्तों में पख्याई से पुख्तगी ये लाजमी है, एक पत्नी होवे तो ऐसी कि सारिया ही खुशियां का सोमा बन जाए पति, और पति मान कर। तो इस लाजमी है कि रिश्ते महानता आवे, किसी महान नाल संबंध जोड़े, और इन्हों दो आत्मावान के संगम, इन्हों दो शरीर के संगम में कोई मदद चाहिए है। जैसे परिपूर्ण परमात्मा की दुनिया की असं देखते हैं, दोहां जोड़ने तीसरा चाहिए, दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहिए, दो कपड़िया जोड़ना है, कोई धागा चाहिए, दो इटा जोड़ना है, तो बकायदा गारा सीमेंट इत्यादि चाहिए है, दो लकड़ा नु जोड़ना है, श्रेय किल कुछ ना कुछ है चाहिए है, दो दिला नु जोड़ना है, इतने दो दिल जोड़ने, दो विचार जोड़ना, दो ख्याल जोड़ना, तो थोड़ी से चाहिए है। बस ये गुरु तीजा है जो दोहां नु एक करता है, दोहां से मोर लांदा है। तो हुण मैं दो मिनट आपके होर लवान से समाप्ति करा। रिश्ते दुनिया में दो तरह के हैं, खून के रिश्ते, ख्यालों के रिश्ते, विचारों के रिश्ते, मन का रिश्ता। जिहड़े खून के रिश्ते ने, इन्हां दीआं प्रणालियां तीन ने, नानके दादके सौरे। वे खून का रिश्ता, दादकियां नानकियां ते फिर सौरियां। पर नानके दादके ते सौरियां दे रिश्तियां नू जिथों जन्म मिलता है पति पत्नी तो, ये रिश्ता खून का रिश्ता नहीं है। बच्ची किसे घर की, बच्चा किसे घर का खून एक नहीं है। कितना किया जा सकता खून एक नहीं, ये खून एक नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने भी नहीं मने। सतगुरु की बाणी कहती है ये दिलों की सांझ है, विचार की सांझ। एक जो दोए मूर्ति धन फिर कही है सोए। महाराज कहते हैं असि पति पत्नी उसनों कहने, विचार एक हो गए ने मूर्तियां दो, ख्याल एक हो गए ने मूर्तियां दो ने। पर इतनी गल स्पष्ट है, जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार का जन्म उत्थे ही, वरना नहीं होगा। जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार उत्थे पैदा होता है, और जिथे प्यार है उत्ते एतबार भी आता है, एतबार भी मनुख का उत्थे नहीं जाता।

गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणों में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया कर शरीर स्वस्थ कीन समय

करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मृग न जाने भ्रमदा भरम भुलाया। मनुख दे प्राणा विच जिहड़ी प्रबल प्यास है वो जीवन दी है, सदीवी जीवन दी है। फिर जीवन तो बाद जीवन लई सारिया लोड़ा सारिया मंगा, लेकिन प्रबल ते प्रथम प्यास जीवन दी है। भय भी केवल मौत दा ही है और कोई भय नहीं। जिथे भी मनुख भयभीत होवे समझ लो कुछ ना कुछ इस दे खत्म होण वाला है या खत्म होण दी संभावना। भय उसे दई है चाहत लालसा जीवन दी और परबल भय मौत दा। जे भारत दे सनातन चिंतन नु वेखिए, उपनिषदां दे ऋषियां नु वेखिए, पुराणक प्रसंगां नु देखिए, तो जीवन दा दाता दाता विष्णु, मौत दे देण वाला शिव जी। ब्रह्मे ने संसार बनाया, उदा कोई मंदिर नहीं, बन गया संसार सो बन गया, जन्म हो गया सो हो गया। हुण ते लालसा जीवन दी ते भय मौत दा, तो सारे देश विच विष्णु दी पूजा शिव जी दी पूजा हिंदू जगत दे। विष्णु नाल लक्ष्मी है, जीवन ते जीवन दिया सारिया लोड़ां दी पूर्ति। पर शिवजी दे गले देखते फनियर नाग ने, मुर्दियां दी खोपड़ियां दी माला है। शमशान घाट दा शिवजी दा वसेवा है, मौत दा देवता शमशान नाल संबंधित है, जीवन दा देवता लक्ष्मी नाल पदार्था नाल संबंधित है। एक प्रतीक है लालसा परबल जीवन दी है, भय परबल मौत दा है। जीवन दे देवते दी पूजा इस वास्ते जीवन बने आ रहे बने आ रहे बने आ रहे। मौत दे देवते दी पूजा इस वास्ते

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
2: है।
3: Mercy.

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर उन महान पवित्र आत्मावां दी याद विच

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: पार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरहु
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का एह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल एह रतन
1: सुनत कमाप्त हो उधार
0: आप त्रै लोकै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजे
0: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजे
1: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिनकै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट गए बैर भई सबरीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भई गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेवा
1: आज जाल विकार ते रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक रवहि खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्थित करहो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सुहोत निधान
1: सब इच्छा ताकी पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सकल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ते फल तिस जन कै मुख भनि
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सकल मतांत केवल हर नाम
0: गोबिंद भगत के मन बसराम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरण ताका दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सत्य ऊज ताकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी।

सिमरन नहीं है और दान नाल कोई मन निर्मल नहीं होता। अगर सिमरन ना होवे तो दानी महाहंकारी होता, दानी महा बेईमान होता, गुस्ताखी माफ है। बहुत वड्डा दानी पर बहुत वड्डा बेईमान है। बेईमानी करके धन कमाया, दानी बने होया। सती पाप कर सत कमाए, बड़ी कीमती पंक्ति है। सती पता है किसी नूं कहिंदे ने? दानी नूं। सत कमाए, सती पाप कर सत कमाए। दानी पाप करके धन इकट्ठा करता है, फिर दान देता है, कहिंदा मैं धार्मिक कर्म किया, हद हो गई। जिहड़ा तू कमाया ही पाप नालों दिता होया पुन किस तरह हो गया, किवें हो गया? गुरबाणी बहुत गहराई जाती, इतना ना समझ लेना। मैनू कई मिल पैंदे ने गैनी जी, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने। मैं कह तेरे चेहरे दे उत्ते एक पंक्ति की झलक भी नहीं मिलती, एक पंक्ति की झलक भी नहीं मिलती। तेरे व्यवहार दे उत्ते एक पंक्ति की झलक भी नहीं मिलती। की होया तू चार सुखमनी साहब दे पाठ कर लै? दान सेवा, दो दानी लड़ पैंदे ने। दान दे नाल हंकार जांदा नहीं, कई दफा वध जांदा, बड़ा भयंकर वध जांदा। कुछ गल्लां सामने आईयां ने, मैं नहीं कह रहा, इस वास्ते संकोच करके वापस पिया करूंगा। सती पाप कर सत कमाए, बहुत वड्डा दानी है, जरूर बहुत वड्डा बेईमान होवेगा, क्योंकि पापा बाजो होवे ना ही मोया साथ ना जाए। बहुत वड्डे पाप ना कीते जान तो इतना धन इकट्ठा ही नहीं होगा। फिर पाप का बोझ लाने वास्ते दान, महाराज कहते नहीं किस तरह हो सकता है? जिहड़ा इकट्ठा कीता है पाप नाल, प्राप्त किया है पाप नाल, उहदे देण नाल पुन किस तरह हो गया? सती पाप कर सत कमा है। धार्मिक इकट्ठ, धार्मिक सूझ बूझ नूं पैदा करन वास्ते गुरु द्वारे होए सोझी पाइस, इत्थे आपां आया सूझ ते समझ लैण वास्ते। किस दी समझ? घर दी समझ, दर दी समझ। दर घर की सोझी ना है, ना घर दा पता, ना दर दा पता। हुण होर भी मैं अर्ज करां, घर दे च प्रवेश उसनों मिलदा जिहड़ा पहले दर ते पहुंचे। पहले दर ते पहुंचना होंदा, दरवाजा पहले होंदा। घर बाद दे सो दर के हा, सो घर के हा जित वह सर्व संभाले। एक होर भी अर्ज करदे हां, परमात्मा निराकार है, आकार तो रहत है। इन्हों बयान करके मैं अगे चला। सारा आकार उस तो आउंदा जिहदा कोई आकार नहीं, सारे रूप उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। चकर चैन अर वर्ण जात अर पात नहिं जे, रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत, अरूप हैं अनूप हैं। या इंज कह लो, सारे मजहब भी उस तो आउंदे ने जिहदा कोई मजहब नहीं है। ऐ शब्द भी सुन लो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तं अमजबे, नमस्तस्त अजबे, हे अजब स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं। ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ना तू यहूदी है, ना तू पारसी है, ना तू जैनी है, ना तू बौद्धी है, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तेरे कोई तात मात नहीं, तेरा कोई मजहब नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी हिम्मत से बड़ी जुरत दिखा रहे ने थे, नमस्तं अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनू, तू अमजहब है, तेरा कोई मजहब नहीं। मजहब एक रस्ता है, मजहब का अगर कोई माण भी कर रहा है तो रस्ते दे चे, ठीक है रस्ते चे, घर तक पहुंचने वास्ते रास्ता चाहिए। घर पहुंच गया कोई मजहब नहीं, क्योंकि जिसका घर है, जिस दे घर दे च जा

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: जन परवान
1: प्रभु को सिमर से पुरख प्रधान
0: प्रभु को सिमर से बेहमो ताजे
1: प्रभु को सिमर से सर्व के राजे
0: प्रभु को सिमर से सुखवासी
1: प्रभु को सिमर सदा अविनाशी
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
1: नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभु को सिमर से पारि उपकारी
2: प्रभु को सिमर तिन सत बल हारी
0: प्रभु को सिमर
3: तिन शुरू करो
0: गौड़ी सुखमनी महला पांचवा श्लोक एक ओंकार।

0: संत
1: कृपा ते अन दिन जाग
0: नानक सिमरन पूरे भाग
1: कै सिमरन कबहु का प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे
0: प्रभ कै सिमरन कबहु न छूरे
1: प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी
0: प्रभ कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभ कै सिमरन निश्चल आसन
0: प्रभ कै सिमरन कमल विलासन
1: प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार
0: सुख प्रभ सिमरन न पार
1: से सिमरे जिन आप सिमराए
0: नानक ताके नानक
2: सिमरे से जन जिन का प्रभ मैया
0: नानक तिन जन सन्नी पया
1: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए
0: हर सिमरन लख बेद पाए
1: हर सिमरन पै

0: जाता
1: नानक कौन जन जन पराता
0: करो बेंती पार ब्रह्म सब जाने
1: अपना किया आपे माने
0: आपे आप करत न बेरा
1: किसे दूज नावत किसे बजावत नेरा
0: पाव स्याणप सगल ते रहत
1: सब कुछ जाने आत्म की रहत
0: जिस पावे तिस

0: जेहे प्रसाद शक्ति ही अमृत खाहे
1: सागर को रख मन माहे
0: जेहे प्रसाद सुगंधित तन लाभ है
1: इसको सिमरत परम गत पावे
0: जेहे प्रसाद बस है सुख मंदर
1: जिसे ध्याए सदा मंदर
0: जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो
0: जेहे प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ध्याए धावन रोग
0: जेहे प्रसाद पाठ पटंबर हटावे है
1: जिसे त्याग का चावन
0: जेहे प्रसाद सुख सेज सोई जय जेहे प्रसाद तुझ सब को माने जेहे प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जपत दरग है मान पाव है
1: नानक पासे भी कर जाए
0: जेहे प्रसाद आरोग कंचन देही
1: लेवलावो तिस राम सुनेही
0: जेहे प्रसाद तेरा ओला रहत
1: मान सुख पावे हर हर जस कहत
0: जेहे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके
1: मान सरनी पर ठाकर प्रभु काहे
0: जेहे प्रसाद तुझ को ना पहुँचे
1: मान सास सास सिमरो प्रभु उचे
0: जेहे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
1: नानक ताकी भगत रहे
0: जेहे प्रसाद अभूखण बहरी जय
1: मान दस सिमरत को आलस की जय
0: जेहे प्रसाद असभ हस्त असवारी
1: मान दस प्रभु को कबहु ना सारी
0: जेहे प्रसाद बाग मिलख तना
1: राख त्रोई प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बनत बनाई
1: उठ बैठ सब से ध्याए
0: सहे ध्याए जो एक अलख है
1: नानक तेरी रखे
0: जेहे प्रसाद करहे पुन बहु दान
1: मन आठ पैर कर जिसा जान
0: जेहे प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: तिस प्रभु को सास सास जतारी
0: जेहे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सो प्रभु सिमरो सदा अनुप
0: जेहे प्रसाद तेरी नीकी जात
1: सो प्रभु सिमर सदा रात
0: जेहे प्रसाद तेरी पत रहे
1: गुर प्रसाद नानक जस रहे
0: जेहे प्रसाद सुनहे कर्ण नाद
1: जेहे प्रसाद पेखे बसमाद
0: जेहे प्रसाद बोलहे अमृत रसना
1: जेहे प्रसाद सुख सहजे बसना
0: जेहे प्रसाद हस्त कर चलहे
1: जेहे प्रसाद संपूर्ण पड़े
0: जेहे प्रसाद परम गत पाव है
1: जेहे प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाग हो
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो
0: जेहे प्रसाद तू प्रकट संसार
1: प्रभु को मूल न मनो विसार
0: जेहे प्रसाद तेरा प्रताप
1: रे मन मूल तू ता को जाप
0: जेहे प्रसाद तेरे कार्य पूरे
1: इसे जान मन सदा जुरे
0: जेहे प्रसाद तू पाव है साच
1: रे मन मेरे तू दान सुराच
0: जेहे प्रसाद सब की गत होए
1: नानक जाप जो रे गत होए
0: आप जपाए जपै सो नाओ
1: आप गवाए सो हर गुण गाओ
0: प्रभ कृपा ते होए प्रगास
1: प्रभु दया ते हमर निवास
0: सो प्रसन्न बसे मन

0: लागे तर्प माया।
1: ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक,
0: बस्ता को खोदे को चंदन लेक।
1: ब्रह्म ज्ञानी का एह गनाओ,
0: नानक ज्यों पाव का सहज स्वभाव।
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला,
0: जैसे मैल न लागे जला।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगास,
0: जैसे तारु पर आकाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी के भीतर सतर समान,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान।
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा,
0: मन अपने है सबसे नीचा।
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पै,
0: नानक करे।
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया।
0: ब्रह्म ज्ञानी से कुछ बुरा ना पाया,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी।
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी,
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता।
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योगा,
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
0: ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
1: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस,
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समा।

0: राम ज्ञानी के नाही तंदा
1: राम ज्ञानी रे साग संबंधा
0: राम ज्ञानी के होए सो भला
1: राम ज्ञानी सो भला
0: राम ज्ञानी संग सगले उधार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार।

0: संसार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जगत जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण मूर्ख विधाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार।

0: परवान।
1: अपनी दास को आप कृपा करे,
0: इस दास को सब सोगी पहे,
1: अगले संगत में उदास
0: ऐसी जोत नानक राम दास।
1: आपकी आज्ञा आत्म हतावे,
0: जीवन मुक्त को पावे,
1: सहार खते सास सोग,
0: सदानंद नहीं भयोग,
1: सास वारन तैसी उस माटी,
0: तैसा घर तैसी बेखाटी,
1: तैसा मान तैसा अवमान,
0: तैसा रंग तैसा रंगान,
1: बरताए साई जोगत,
0: नान जो पुरख कहिए जीवन मुक्त,
1: हर ब्रह्म के सगले ठाओ,
0: जे जगता राखे तैसा तिन्हाओ,
1: आपे कारण करावन जोग,
0: रापावे सोई पुन होग,
1: आप होए अंत तरंग,
0: लगे न जाए पार ब्रह्म के अंग,
1: सीमत दे तैसा प्रगास,
0: पार ब्रह्म का ताव।

0: कोट होए पुजारी कोट पे तीर्थवासी यही कोट वेद के स्रोते
1: कोट ईश्वर होते
0: यही कोट आत्म ध्यान तार है
1: यही कोट
0: यही कोट नवतन नाम त्याग है
1: यही
0: कोट पे अपमानी
1: यही
0: कोट कृपण कठोर
1: यही
0: कोट पर दर्प को फिर
1: यही कोट दुख ना करे
0: यही कोट मा

0: कई कोट पवन पानी वै संतर
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट ससियर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव रान इंद्र से छतर
0: सगल समग्री अपने सूत धारे
1: नानक जिस पावे तिस तिस निस्तारे
0: कई कोट राजस तामस सातक
1: कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र
0: कई कोट किए रत्न समुद्र
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चिर जीवे
1: कई कोट गिरी
0: कई कोट जक

0: तेई कोट पार ब्रह्म के दास
1: तेमो वचना तम प्रकाश
0: तेई कोट तत् के भेते
1: सदा निहारे को नेत्रे
0: तेई कोट नाम रस पीव है
1: अमर भय संसारी जीव है
0: तेई कोट नाम गुण गाव है
1: आत्म रस सुख सहज समार।

0: गौर प्रसाद नानक सच कहे।
1: कबहु होए पंडित करे बख्यान,
0: कबहु मौन तारी लावे ध्यान,
1: कबहु तत् तीर्थ स्नान,
0: कबहु सिख साधक मुख ज्ञान,
1: कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया,
0: अनक जोर पर में परमिया,
1: नाना रूप जो स्वाग।

0: ज्ञान परगास
1: स्थान का नहीं विनाश,
0: मन तन नाम रते एक रंग,
1: सदा बसे पार ब्रह्म के संग,
0: जो जल मह जल आए खटाना।

0: अंतर राज अभिमान
1: सो नर पाति हो समान
0: जो जाने मैं जोबन पंत आपस को कर्म पंत कहावे धन भूमिका जो करे गुमान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे धनवंता होए कर गरबावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस सब ते आप जाने बलवंत किसे न बदे आप अहंकारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान कोट कर्म करे हो तारे अनक तपस्या करे अहंकार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे आपस को जो भला कहावे सर्व की रेन जाका मन होए जब लग जाने मुझ ते कश होए जब यह जाने मैं किस करता जब तारे को बैरी मीत जब लग मोह मगन संग माए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे सहस खटे लख कोठ तावे अनक भोग बिखिया के करे बिना संतोख नहीं को राज्य नाम रंग सर्व सुख होए कर्ण करावण आपे आप कर्ण करावण करने हार जैसी दृष्ट करे तैसा होए जो किस किन्नो सो अपने

0: देखन काल जियो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन तरिक जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
0: संत के दुखन सर्प को चले।

0: संत का दुखी भुखा नहीं राजा
1: यो पावन कीर्तन नहीं लावै
0: संत का दुखी छुटे अकेला
1: यो बाण तेल माहि दोहिला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सत मिथिला कहत
0: तिरत निंदका तुर ही पया
1: नानक ज्योत सावे सोई किया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
1: संत के दुखी को दर्द मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाय।

0: उत्तम कर्मान
1: कछ करे सो प्रभ कै रंग
0: सदा सदा बसे हर संग
1: सहज सुभाए होवे सो होए
0: करने हार जाने सोए
1: प्रभ का किया जन मीठल गाना
0: जैसा सत सत निष्ठाना
1: जस्ते उपजे तिस माहे समाए
0: ओए सुख निदान।

0: संग
1: लाट करे हो रसोगी पतंग
0: राम नाम जप हृदय माहे
1: नानक पास से की कर जाए
0: सब खर को लेन तू आया
1: राम नाम संग कर पाया
0: मान ले हो मन मोल
1: राम नाम हृदय में तोल
0: देखे पर संत संग

0: प्रे नाही किस कोए आपे बिना आपे दाना
1: सुजाना
0: ब्रह्म परमेश्वर गोविंद।

की गुर दुर मत मल हिरै सतगुर सिख के बंधन काटे सतगुर सिख को नाम धन दे सतगुर सिख का हलत पलत सवार गुर के ग्रह सेवक जो रहे आपस को कर कश न जनावे मन

0: की मत ले।
1: इस विश्व गुर का मन माने
0: तो
1: सतगुर जिस हृदय हर नाओ सर्व निदान जी का दाता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म सहस स्यान पलया न जाइए।

0: सुन कर बचन करन आगाने पूरा गोर अखियो जाका मंत्र गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
1: नानक जिस पावे तिस लए मलाए
0: जिहबा एक औसत अनेक काहू बोल न पहुँचत प्राणी निराहार निर्वैर सुखदाई अनक भगत बंधन नित करै सद बलिहारी सतगुर अपने एहो हर रस पावे जन कोए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगट है।

0: संत जना मिलकर हो विचार,
1: एक सिमर नाम अवतार,
0: और अपाप समेत विसार हो,
1: चरण कमल गत में अवतार,
0: अन्न कारण सो प्रभु समरथ,
1: प्रकट रहो नाम हर वक्त,
0: यह स्थान सांचो हो वह भगवंत,
1: संत जना का निर्मल मंत,
0: एक आसरा खो मन माहे,
1: सर्व रोग नानक मिट जाए,
0: स्तन को चार कूठ उठतावे,
1: सो तन हर सेवा के पावे,
0: सुख को नित

0: अपावन शूटन हारे हर की भक्त करहो मन लाए
1: मन वंशत नानक फल पाए
0: संग न चालस तेरे तना
1: सत
0: मीत कुटुंब अर बनता
1: ते गौतम सनाता।

0: कमल रखो मन माहे,
1: जन्म जन्म के दिल लिख जाए,
0: आप जपहो अवरा नाम च पावहो,
1: सुमत कहत रहत गत पावो,
0: सार पूत सत हर को नाओ,
1: सहस भाए नाने गुण गाओ,
0: गुण गावत तेरी उत्तर समैन,
1: मिलस जाए हो मैं लिख पैलो,
0: अचिंत बसे सुख नाल,
1: सास ग्रास हर नाम संभाल,
0: जाड स्यानप सगली मना,
1: साध संग पावे सत धना,
0: हर पूंजी सच करो संच करो हो बिहार,
1: ईहा सुख दर कै जयकार,
0: सर्व निरंतर एको देखो,
1: नानक जाके

0: कह हर अगम अपार
1: सब
0: निर्गुण प्रभु सहज सुभाए
1: सब
0: आप है आप अपनी ज्योत तरह अपन चले ते आप करने हार अविनाशी सुख अपने आसन जब पूर्ण करता प्रभु सोय जब व्यक्त गोचर प्रवेका जब नाथ निरंजन गोचर गादे अपनी आप ही चार
1: जा
0: निर्मल पुरख पुरख पत होता यह निरंजन निरंकार निर्वाण यह स्वरूप केवल जगदीश।

0: सास सास सिमरहो गोविंद
1: मान्यांतर की उतरे चंद्र
0: सास नित त्याग हो तरंग
1: संत जना की तोड़ मनांग
0: आप छोड़ बेनती करहो
1: सास संग अगर सागर धरो
0: हर तन के पर लेहो पंडार
1: नानक गौर पूरे नमस्कार
0: केम कुशल सहज आनंद
1: सास संग भगत परमानंद
0: नरक निवार उद्धारो जियो चित चित बहो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दामोदर दीन दयाल
1: दुख पंजन पूरन कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का ए आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अनेक लारे अंतर
0: सुनत कमावत होत उदार
1: आप तेरो के सार
0: सफल जीवन सफलता का संग जय जय शब्द अनाहद वाजे प्रगटे गोपाल महात के माथे सरन जोग सुन सरनी आए मिट गए बैर पे सब रेन प्रसन्न पे गुरुदेव आल जंजाल विकार ते रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते।

भय सामने रख के इस तरह के पुरश नूं डराया नहीं जा सकता जिसकी शक्ति सब दिष्टान तो उपर उठ गई है। दरअसल डर विच जीण वाला मनुख इस गल का सबूत मुहैया कर रहा है कि सब दिष्टान तो थले जी रहा है। भगत कबीर कहिंदे ने, कहत कबीर राम गुण गाओ आप न डरो ना अवर डरा। मैं उस दुनिया विच पहुंच गया जिथे ना मैं किसी तो डरदा ना ही किसी नूं डरांदा। अक्सर उही मनुख दूजियां नूं डरांदा है जिहड़ा किसी तो डरदा है, क्योंकि भयभीत होया मनुख ही अगले नूं भयभीत करदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज भी परम ज्ञानी दे लक्षण यही दसदे ने, भय काहू को देखने नै भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। वास्तविक परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ओही है जो भय दी दुनिया तो उच्चा उठ गया है, ना डरांदा है ना डरदा है। सब दिष्टान चक्र नु विन के जैसे शक्ति उपर उठती है, भय दी दुनिया खत्म, निर्भय दी दुनिया शुरू हुई। निर्भय केवल परिपूर्ण परमात्मा है। साहिबां दी बाणी दा फरमान, डर पे धरत आकाश निखतरा सिर ऊपर गगन करार, पौन पानी बैसंतर डर पे इंद्र विचारा। एका निर्भव बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुरमुल गाए गुनी। सतगुरु दा ते इत्थे तक फरमान है कि सूक्ष्म रूप देच ग्रह निछत्र सूरज चंद तारे सब डरे हुए ने, पै देच ने डर दे चने, मर्यादा दे चने। तमाम जीव पशु पंखी मनुख डर दे चने। ये ठीक है कि डर मर्यादा दे च रखन वास्ते चाहिदा है, लेकिन हर वक्त मनुख डरिया होया अपना मानसिक संतुलन गवा बैठता है। किधरे मैं बीमार ना हो जावा, किधरे मैं मर ना जावा, किधरे मेरा कमाया हुआ धन नाश ना हो जाए, बनी बनाई प्रतिष्ठा मेरी खत्म ना हो जाए, किधरे मेरा रुतबा कोई खो ना लवे, किधरे जंग देच या मुकदमे देच मैं हार ना जावा। ये भय मनुख नु बनिया रहिंदा है। सब दिष्टान चक्र नु विन के जैसे जीवन चेतना जीवन शक्ति उपर उठती है, ये भय दी दुनिया खत्म हो गई, निर्भय दी दुनिया आरंभ होई। और परिपूर्ण परमात्मा चूंकि निर्मल है, हुण उसदा ही भय शुरू होया, भाव उहदी गल मन्नण दा अंदर चाव पैदा होया। इसे नूं सतगुरु कहिंदे निर्मल भाव पाया हर गुण गाया हर वेखे राम हदूरे। परमात्मा आप निर्मल है, उहदा भय भी निर्मल है। जगत मैला है, जगत दा भय भी मैला है। जगत दा भय जिस दे अंदर है वह निर्मल नहीं हो सकेगा, ते परमात्मा दा भय जिस दे अंदर है वह मैला कदी नहीं हो सकेगा, सदीव निर्मल होवेगा। बाबे फरीद दे श्लोकां दे साहिब गुरु अमरदास जी महाराज दा एक परम पावन श्लोक है, भय पईए तन खीण होए, लोभ रथ विच्चों जाए ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होए, त्यों हर का भव दुरमत मैल गवाए। जिस तरह अगन सोने दी तमाम खोट नूं कढ देंदी है, रब्बी निर्मल भय मनुख दे तमाम विकारां नूं शांत कर देंदा है, मनुख दे तमाम पतत संस्कारां नूं खत्म कर देंदा है। तो सब दिष्टान चक्र नूं विन के जैसे जीवन चेतना उपर उठी, मौत दा भय खत्म हो गया। किसे प्रकार दे भय दा जिहड़ा बोझ सी ओ सिर तो लै गया, निर्भय दुनिया आरंभ होई, सिर दे सारे बोझ उतर गए। जप जारी है, तप जारी है, साधक दी साधना बकायदा जारी है, राही है ए मंजिल दा चल रहे है, चल रहे है। टिकाणा की है आ गया चक्र नु विन के अगे जाना, किथे परम आनंद तक, परम शांति तक, परम निधान तक, परम पुरख तक, जिसनु कह है परमात्मा ईश्वर अकाल पुरख, उत्थे तक पहुंचना। और उसका सरूर उसकी मस्ती उसका अनुभव मनुख नु उदों ही आंदा है जब आ गया चक्र नु विन के ये पहुंचता है, और ये चक्र मस्तक विच है। इतनी गलती स्पष्ट हो गई कि सुरत उच्ची करनी पेगी, ध्यान दे आसरे ते शक्ति नु उपर लै जाना।

0: ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਚਲੋ ਸੱਜਣ ਕਈ ਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਟੌਂਕ ਧੁਆਨ ਪਿੰਡ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ
1: ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਛ ਪੰਨੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਨਿਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਤੋਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਮੀਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਵਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਮੀਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਨਮ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਮਰਨ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ? ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਮੰਗੋਲ ਨਸਲ ਹੈ, ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਕਾਲਾ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ, ਸਾਂਵਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਦੀ ਮਾਇਲ ਆ, ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਖਲੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਸਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਬੇਕ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹਿ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਹੂਦੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰਸੀ ਹੋਵੇਗਾ, जैनी होवेगा, बोधी होवेगा, कुछ ना कुछ होवेगा अगर वो व्यक्ति है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जरूरत देखो फरमान करते ने, नमस्तम अमजबे नमस्तस्त अजबे, तेरा कोई मजहब नहीं। जब तू रंग रूप रेख तो न्यारा है, जात पात तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, तेरा कोई मजहब नहीं है। तू हिंदू नहीं है, तू सिख भी नहीं है, तू मुस्लिम नहीं है, तू क्रिश्चियन भी नहीं है। शब्द मैं फिर थोड़े सामने रखा गुरु गोविंद सिंह जी दे, नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है तेनो, तू अजब स्वरूप है, तू अजब स्वरूप है। दो नुक्ते होर बयान करके मैं कुछ इतिहास दे पन्ने रखने ने थोड़े सामने। अगर उसनु व्यक्ति मन लईए ना, तो व्यक्ति एक समय च एक ही थां ते आउंदा है। जिवें तुसी इत्थे गुरुद्वारा साहब बैठे हो, अपने घर दे च नहीं हो। व्यक्ति एक समय एक ही थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो सतवें पाताल या सतवें आसमान या किसे सचखंड बैकुंठ दे च बैठा होगा, कम से कम इत्थे ते कोई नहीं, व्यक्ति दी तरह कोई नहीं। अगर है तो फिर कहो केड़ा व्यक्ति रब है, खुदा है, परमात्मा। व्यक्ति एक समय एक ही थां ते आंदा है, सारी थावां ते नहीं आंदा। सतगुरां दी बाणी कहिंदी है, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजन हार जियो। हे सिरजन हार, मैं जिथे जाना तू उथे है, तू ते व्यापक है। व्यक्ति व्यापक नहीं हो सकता। अगर उसनु व्यक्ति मन लिए तो व्यक्ति सर्वकाल भी नहीं, हर समय नहीं है। जिमें असी 20, 30, 40, 50, 60 साल पहले नहीं सी, नहीं सी। हर एक बार ये गल आखी जा सकती है, तो हर एक 10, 20, 30, 40 साल बाद नहीं होगा। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा किथे तेडे मापिया जिन्नी तू जनिया। कल ते मां है सी, बाबा फरीद कहते पता नहीं किथे चली गई। 5 साल पहले ते पिता है सी, आज कोई नहीं। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो परमात्मा नु भी काल दिच बयान करना पेगा, समय दिच बयान करना पेगा। इंज आखांगे परमात्मा होया सी या परमात्मा होवेगा। कलगीधर पातशाह कहते हैं, अकाल है अजाल है, उस समय दिच नहीं है, वो है सो है। होया सी नहीं कह सकते, होवेगा नहीं कह सकते, वो है सो है, समय तो बाहर है। अगर परमात्मा नु व्यक्ति मन लईए, इस नुक्ते नु बयान करना जरूरी सी। तो एक होर प्रश्न भी खड़ा होगा, क्योंकि व्यक्ति दे दो रूप ने, स्त्री और पुरुष। परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है। इसनु बड़े विस्तार सहित गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने बयान किया, पर इस वक्त मैं नहीं छेड़ना, क्योंकि आप पुरम मना रहे। तो फैसला करना पड़ेगा परमात्मा स्त्री है कि पुरुष है। अगर व्यक्ति है, जिन्ना जिन्ना ने भी व्यक्ति दे रूप च मने है, वो किधरे पुरुष दी पूजा किधरे नारी दी पूजा तो बच नहीं सके। ते गुरु ग्रंथ साहब दा फैसला है, जैसा सेवे तैसा होए, जैसा परमात्मा नु मनोगे वैसे ही हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। जिस दे विचार करिए, जिनू सोचिए, जिनू याद करिए, मनुख दा मन वैसा ही हो जाता है। तन ते एक दिन खाक हो जाना है, राख हो जाना है, अगों साडा संस्कारां दा ढांचा जांदा है। अगर उस विच इस्त्री चिंतन सी, इस्त्री दियां यादां सन, इस्त्री दी विचार सी, अगला जन्म फिर इस्त्री दा। महामाई की पूजा करे नर से नार होए औतरे, गुरबाणी दा फैसला। वो व्यक्ति नहीं है, इस वास्ते वो स्त्री ते पुरुष भी नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने धनाश्री राग दे, सुन मंडल एक जोगी वैसे है, नार ना पुरख कहो को कैसे। सुन मंडल निर्विचार अवस्था, उन्हों सुन समाधि कहने, सुन समाध अनहद तैनाद कहन ना जाई अचर्ज बिस्माद। जिस दिन चलदे हुए विचार मन दे च रुक जांदे, निरंकार प्रगट हो जांदा है। जद कोई भी फुरना ना चले, कोई भी विचार ना चले, उन्हों गुरु अर्जन देव जी सुन समाद कहंदे ने। सुखमनी साहब दी पंक्ति, सुन समाद अनहद तैनाद। कितना भी पाठ करदे अंदर साडे विचार चलदे ने, कितना भी वाहेगुरु वाहेगुरु जपी अंदर अपने अपने फुरने चलते, कितना ही कथा कीर्तन सुनिए ते करी अंदर फुरने चलते, वो नहीं रुकते। सुन समाद अनहद तैनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद। सुन समाद अवस्था दे जर्रे जर्रे नाल एक जुड़िया दिखाई दे रहा है। महाराज कहते स्त्री पुरुष नहीं है। सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। तो हुण मुक्त सर में अर्ज करो, परमात्मा की ये शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति है रंग रूप तो न्यारी, चक्र चैन तो न्यारी, वरण जात तो न्यारी, मजहब तो न्यारी, एक व्यापक शक्ति है। पर शक्ति तो मुराद किधरे ए ना ले लेना कि जड़ है, नहीं चेतन है। उस शक्ति नो भारत दे प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने इंज कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, सदी भी है। शिवम प्रकाशमान है, शिव दे अर्थ प्रकाश चानना, प्रकाशमान है। सुंदरम अति सुंदर है, अति सुंदर है। इनू गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते ने, सत सुहाण सदा मन चाओ। तू सत है, सुहाण अति सुंदर है, सदा मन चाओ, तू सदी भी खिड़िया होया है, आनंद स्रोत है। वैदिक ऋषियों ने भी ऐसा कहा, सत चित आनंद।